0: Dejas Sapi.
1: आज वर्ल्ड कप देहा सब भी हो गए मैच तक तिबे पुनः हमें गणित में दायर और मैं और मैं मिवक तो गणित में मैं गेंदा नहीं ईरान आज न्यूजीलैंड कोले मैच तिबे पुनः हमें गणित में गेंदा नहीं वरक खास वरक हिग्गाम हिद्दत वगो तक का एकी का मैं मैच तक करी हमें दानी तिबे पुनः गुडान वान ईरान वाह दक्का दायर हो सके ने फुटबॉल है बदा दायर कुनों ईरान के वाह की मुझे दुनिया के समय दोस्त को देख के वाह हंगुराम है साहब ईरान के ना मुझे दुनिया को ते हैं ना मैं ईरान कोच में बुनाने हंगुराम साहब ईरान के टीम ऐसा है मैं बड़ बदल के मैं लिबे वगो तक मधुम आए को फिटनेस संग ऐसा और बदलता कम है ना मैं मुहिम कम के बस बाइक दो नुको हम मैच तक कामयाब करूँ मैं सैकड़ों आदि देव ने बुरा देव कम से ईरान के कोच में उन्हें पाह कोफ आद ईरान के मैं वहाँ धक्का दार कमसर का और मैं ईरान बेहे मैं वहाँ और मैं कमेंटेटर अनुवाद और मैं दिलासा करवा बेफल धक्का दा और मैं प्रोग्राम था होती बेफल हम गणित टीम मॉडिस के बेफल को यह गेंदा में वहाँ था होते रहा दो साल
2: मैं गेम का मैं मोड़वा मसे कुरुम का रूह का फिनिगेन दिए मैं एक सब कदा मुलिक एक मैच ओपन हुई එහෙම ආර්ගුමන්ට් නම් මේ මේ විසක න්ියුස්ලන්ඩ් හැබවර්මෙන්ට ගෝල් ජෙස්සස් ආර්ගුමන්ට් නම් බදමුන් දියරුක අම මේ මේ ඉගේ ඉගේ තෝ මෙහම මේ ෆුරසත් හොදානකන් ඉරාන් වස් ගෝල් ජහ ගෝල් හම ජහනක අනකෝ අදිස් න්ියුස්ලන්ඩ් වස් ෆුරසත් හොම දිබිදාර කහල ගොතක ෆුරතෝ නිවිගෙ මේ දේ එහා ඕපන් කොන් ද ටීම් වස් කුලෆ අනකෝ ලෙන් ආර්ගුල් පොටක් හිකුරි එක මේ මේ එතරි ෆොරි ගොතුන් මේ ෆුරතම හාෆුක මේ ෆෙරීරුක එතරි ෆොරි ගොතු කවුන් හිතරි තකර බඩක පොසිෂන් ඔෆ් ප්ලේයර් කුලේනේ එහෙන් නමෙස් තෙම කාකා පහ කර ගොතන් අස් अरे मैं विशाल के दिग्गज स्ट्राइकर के बेनों को न्यूजीलैंड अने को में एक बिल्डअप गेम में बेनों में नून है कि हमारे लॉन्ग बॉलर समय कुले ने एक एडवांटेज है कि नहीं कि जब लॉन्ग स्ट्राइकर के बेनों एन हिफी है
3: आज मैं फाव को लाओ कंडंग हम आगे तो मिहातन वर्ल्ड कप के कुले उन मैच तक बदल एम में हम एफिशिएंट नूनी एम इफेक्टिव एम में बॉक्स प्लेयर नून नंबर नाइन ने रोल का मैं कुले लन एम आलगंड का नुफेन आदि मिहातन का मैं वर्ग स्ट्राइकर है मिहातन कुले वर्ल्ड कप मैच तक
2: दर को ईरान न्यूजीलैंड गेल दे हिसाब को हम ब्रेक होकर दायर होगा हम वारा फ्री को दे वारा फास्ट को दे दी फुर्सत दी भी जैसे मुझे गोल डाल
4: और फुर्सत का वहाँ का कारण हम फुर्सत का विषय ही लाना है ना मैं ये फुर्सत का हम को मैं सरकार फुर्सत का गोले को तुम वहाँ का धक्का लाइन उसको पड़ा ऊपर
5: PSM's coverage of FIFA World Cup 2026 main sponsor Maldives Post Limited, co-sponsor Allied Insurance in partnership with STO and Maldives Ports Limited, banking partner Bank of Maldives, coverage partner Villa College, Island Perfumes, MTCC, Proxy Home, EZAP and Stelco.
6: Take a pump for the thing.

그럼 파전이 이란호. 이란호 그럼 파전 아기 대학 고파하다 하프 메달 사업. 네버티 네버티 그래 포노아드 볼스 메달 캐나가 니즈든 콘테 이란 하프 트레 포노아드 볼. 마티 마티가 세레 카이 프렌즈 무코링 이란 콘테 보도 그래 포노아드 마세 그래 네 볼 니즈든 그 누아 넘버 우드 볼 팬 타고 파하다 자사드 볼에 데부디 시다 이란 콘테 레 이란 콘테 아톰 볼 아타가 네 크스 니즈든 콘테 레 완나 마세 그래 파하다 ओजन बोला था कि फनुआ आदि बोले ये तेरे दांते बोले बोल दो वहाँ तो ये तेरे कीपर हैं तेरे के लिए किरे क्या दिखा विता फा ईरान को उतरे आए ये तो होश को ना स्पाहा तो ईरान हाफ के तेरे ईरान को उतरे आए बोला तो है तो मस्से मतलब लेफ्ट कोरी फोन वाली निज़दन हाफ टेलीफोन वाली बन निज़दन हाफ कितने हाफ के मिला है संपाह तो निज़दन के पेने बोला तो है कोरी फोन वाली बोल ईरान हाफ नहीं ईरान कुंतने दीपन ईरान के आदि आदि मत आमदी हमें कंट्रोल को दा कोरी फोन वाली मस्से कोरी रोज़े नहीं रोज़े कंट्रोल को दा बैक को फाह तो ईरान के आ नंबर इस चला ही kuri fono ade bolan ke nizden konte bola ta back of fate ere tren keeper nizden ke keeper kuri fono ade bola meden hos kongas ari mat pero el carry nizden ke captain wood wood control ko kuri one ne as as dir ka je la sido ko de fono ade bola te mama ti mos te ti be Orit kon kuri fono ade bola ओद कुरमति दी फेच हो क्या है तेरे तेरे को उरी अली अली कुरे फोनो आज पर में दो होश कंगस निज़दन हाफ की तरफ फेरन जिला डियरे क्या है निज़दन के कीपर कीपर वो एरिया बेर हाफ की मिदा है साबु सामान ना सामान कंट्रोल को लेफ्ट ही थिंक कुरिंग आरी में थी पेने पेने वर्स इतने ने कस कुंत्रे का कुरी पेने पेने बैक ऑफ हाथ जैसा आदर बोल सीधे ईरान को तेरे ईरान को तेरे बोल संकुल जेहिला से आपके में तो बोल को जेहिला कह दे को तेरे बिट्टे के मुद्दे फाफ को बोला बैक ऑफ हाथ तंगस कोनर का बेरुआ थी ईरान को तेरे दो को दी कोनर का बेरुआ ईरान दी फे कोनर ईरान के फुरतम कोनर में चुके देवन कोनर साल इस हैम मिनट कुलेफ चार्ल्स हैमनेट कुले फिंगिरो दे टीम कुर कम टीम से इधर बचा फुरतम हाफ के दे टीम उस कॉल जादी फोनी ईरान के गोल कामे को फोनी रोजन तेविस नंबर अधि निज़दन के गोल कामे को फोनी एकान बोले जस्ट दिफे कोनर नगन ईरान के फास्ट कुल तेरे निज़दन डेरे तेरे गोल डेरे तेरे के बिती दे कुल तेरी कोमे कुल तेरी कर बार बड़े चार्ज कोल लाफ ebe tibi nizden konte jasaf kre nagati bol bodum fonwadi bol machang eri anak sere tere fen jam kurin iran konte ria rozen rozen nagati mase ko nagati bol matmati ane farat ari mati ga sere tere pen sere tere bolun takol fahad konte di hanabur kre fonwadi bol konte mar ko da hal konte ga di fas ari mati khaf ke medal sab iran konte libe di iran konte kre fonwadi bol kuri mati mar ko da hori nizden ke konte ria ga di la farmat bol be साल इस अमिनट कुल इच जे टीम कुर कम टीम इस लड़ जा ये फेलो निज़दन हाफ की मिदास में ईरान ईरान के एल्लो कुरिया ईरान के वही नंबर बॉल हिता कुरी जेल मसे कुरनी ये मोहन लो कुरे इतना लगा दिन बोल मामत मत के लगा दिन दिवस उस पे निज़दन कौन थे निज़दन हाफ कितने कुरी जेहलाफ में तो होर्स को फोन हुआ द बोला में तो ना कैर बोला तो लाइन कुरी जेहलाफ दी थी कुरी दी थी कुल तेरे का ये ना कैर दिया ईरान कौन थे आते हैं फात रोज़ेन रोज़ेन कंट्रोल को द कुरी हाफ की मिदाय साब कुल तेरे का ये ना कैर दिया निज़दन कौन थे आते हैं कुरी ईरान हाफ तेरे फोन हुआ द ईरान के हार नंबर बोले थे कुरी जेहलाफ मोहम्मद
موهب محمد موهب كوري فنوا دي بولا انا كساري متي دي فين كنت كان بول فوار بار دي فاس كور وان ناس اي ميلارد ميلارد كاري دي كنت ريا بول دفاع كوري محمد محمدي محمد بياكل فحت يدي ادي نيمتي ادي انا كسمتر كاري مي مهدي تيرامي Terima kurian hari ini metode carry kurian izinkan half terima kurian fonual bola dia re carry kurian fonual masih kurian Iran kunteri sida gol de fonual bola di horas terima timbera.

0: आदित्य जी अपनी टी शर्ट उतार रही है। टी शर्ट उतार
1: रही
0: है। अरे क्यों मतलब? देखो आप उतार रहे हो या मैं उतार?
2: जिन्नी क्या कर रही हो?
1: उतार।
0: मैं टर्न हो जाती।
2: अजीब हो, पहले बोलती हो टी शर्ट उतारो फिर शर्मा के टर्न हो जाती हो।
3: हाय। वाव हाँ तो सड़ी के तो
4: दिल्ली हो रही है इससे किरण हो रहा है पता ही थे रिया
3: आर मिगे किरण का दीमा बिरे विष्णु गणेश
4: मिगे किरण ने माँ पेनु मी है
3: हाँ तो गधा को पिए तो
4: दुमा को देवस में हो गया को नोड़े ये नाज़िम भी ओफी होगा शिफाना को आगे ऐने के देदरिम भी हॉस्पिटल अगोस कॉफी नीचे बोन ता
3: ना नोड़े मिहार ने कॉफी ए बोई थे कोबा ता जीमा दें बुनी ची इच्छे बदार ना शे बुनी मदो मिया ईवस
4: मिहिरी
3: ये कोचत्ता
4: तीरं जावाहिरो आलिमस रिहिवे सेबहुरी
3: ठीके
4: अले पाला पाला
3: ये बुना हैं मियो मी कागो गेचे से
4: माके आहारेंगे ती नाजम शिफारने दीफहुरी सामानो एना तू ना तो लाफ आहार नती ने
3: हाँ तो पढ़ोगे कमी चीवी काले वेने दो
4: विकाला का नोन है मिली ने ती एंगो स्वरू आफ बाँटता आहार में नती के बेन जे ने फाहू देम्यो ती वी हास रुफिया मी मीमाओ के होरी हाँ कम का फुद्दम वाण अनेक कालार दे नुपुना दे
3: आहार में इतना करनी हुड़ुमा देंगे अपार्टमेंट एक कोई जन्नत कम भी है
4: ऐयो मानियो एकड़ माय कड़ी उन्हें की कराए अपार्टमेंटे मिया काशे आको गिनती को तब कोटरी एक गुड़ुनी मामा हारे तो कोटरी एन्नो
3: आ देंगा आहार मिया काशे आको गिन कोटरी कंडे गुड़ुना सो के एन्नो जी माते उन्हें बड़ू कांडो वरे खाद गे
4: तीवरी हाँ कमें बस हम अच्छे हैं नहीं
3: मिहार कंकंग बहिंग गाता गादा इंगे
4: गादा वाणी जीमा कुरा कमें कुरानी फिर सारे रंगड़ा एक अंगे में रंगड़ा इंगे नहीं बस मानी वो
3: इंगे इंगे एक अम्म कु जीमा मिहार अहन्ना बदल कुरंग अंडे दे माँ मधु
4: मानी में का केते रिवे बाला आर मिहुरी हाँ कमें मिकुरानी वारा रेवों तेरी कमाई की गए मिकं कुरें जहेनी वारा विस्नेगे मीह का कोड़ा वे शक्के वेच्चे या आहार में गे दोस्ती

0: अध्ययन की नवेफती हो रही
1: मेरी वर बड़ा हास वर
0: अनेक काठेस तो क्या रे भी मता मन्हा मन्हा हाँ द देरा वेफाये
1: आहारे के वर क्या कुछ है आहारे न माला में कुरने
0: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडुए ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंहा लो हो दंगे ना
1: स्पेल द टी है
0: आं मिकाहल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
2: स्पिल द टी हमे कणी दिवे राज्य गाडो
3: आदित्य दो होगे हवेरो हतरगड फनरागा
4: रिपीट बुद्ध दो होगे हवेरो हतरगड फनरागा
3: आदि बोडास्पति दो होगे हवेरो फहद जहाडो
0: एन हा सतरस देका सालिस नुए किलो हर्ट्ज मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्स एफएम बैंड हमें कन दिव ही राज्य के अड़ों इंतजार को लवा
5: स्पिल द टी
6: कोबा आंटी याम की मियार कीने
7: याम की मियार कंगे स्वरंगे हिंग गोता कंग उलेनी मैं बुनी इंटरवल कटी का रंगला नुकानी का मिलने गे वरंगा वहाँ निम्माला खाचे उखाला नी का मैं नोनी कुछ जग देनी का मैं विसने गे ऐही मैं विसनो ए बुने इंटरवल कटी का कोम मैं विस ऐहिं का मैं कोले ती बाला ला रो ताची हुन्ना नी हुआ वर दोसे जमी वहाँ का दक्कम वेगिं हुन्ना ता
6: ऐहन ता आरुन मेरे एन मम्मे आस वहाँ दक्का लान क्या मके अब हाँ दी गेद दा दरी फोड़ा इंटरवल लक्की ने हदनी नोबाई था की वैहा वाणी मालनी
8: अस्तु वागोता की याम की कैरीगा इन्ना अर्शन नुगेन्ना ने इंटरवल्ले दें इन्हें यंग हाफ देनी मामा वैसे हैं हदावीला गे कैरी उले स्मेल बेबे आ मामा वैस का ची देने
6: अच्छा हाँ बस्सा कुछ के दें क्यों तिवा का आंटी कैरी नो बुनानी ती वर रंगोल का मिन्नू
8: बापा मम्म बोले फोन ने कुछ जग में हेल्प यस नूनी एच शेयर करियस एवा का एमएन कैरिनो तक करने हो मेरे कंग एच दिन कंग खाना तुम वात हो बस इनके नुआने हो एरुनो की न सवाब ले बैठे
9: कुड़ा कुछ जग का देर गोते वाका एवस मिया कुने देने कबूल करन दाती नमवेस कुज्जागे में गातु गवामी होंगे फरातुमवेस हीवेस नुकुरा कहला अनियाए लिबिदाने जिनसी को तुनकुरा गोनाता जिस्मानी अनियाता नफसानी गेल्लुंता अदि इहुमालुमगे सौबुंदिबे गेल्लुंता मादेन्नु मिफद अमल तकुं कोडकुदिन रक्का तेरि कुरुम अलंचे फियवळुता दिनगने मिकमा देकोळ हरका तेरि वमा एही हो देववमा सादबारे गुळुवा

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मिंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ू आर मिन विसना लिवे बा ताशी दोन सिंह फाखाना के शावर आदि इस कुर्ता का फेंग होली तक उन्हें को आली को उन तक दुआलो कैगना कंग हैदिया फस लीटर के फेंग इस राफ बेगिंदे महाकब बलाना ममी देहास दुई स्त फंसास लीटर के फेंग
3: फेंवरार उस त्याबों ने लूंफा द कंकं कुरंग इस कुरु बार उन कुंग हेदा कुराक कोम में मिनट को कैगना का नोए पॉइंट फाहे लीटर के फेंग इस राफ बेगिंदे
2: फेंबिलंग हेदा कुरंग जे मेंबर कुड़ा कुरुमा मिकमा में तो समाकं देवा
3: ফেংহরে তখন লিখে গুলে তো চেক করব্বা
2: বেনু কো নিউমা ফাও ফেন্টি কে নুজা গতা ইসকুরতা পার করব্বা
3: ফেমবরা আইরা আদন্ন বগুতহু গাবেস স্যাবোনি লুমফদ কাঙ্কমং হেদা কুরা বগুতুগা ইসকুরু বার কোল্লং আদ করব্বা
2: তাশি দোমফদ কাঙ্কম গাবেস ফেং ইসরাফ নুয়ান হে আমল করব্বা আমল করব্বা
4: জিয়াদ আলগন কুডা এচ্চে দন্নাওয়াদ আন্তো
5: গামেন
4: মিয়াদ মিটিং গা জিয়াদ মুফিদু আ সওয়াল করব্বম বিদালুবে মেন্ন তো মুফিদ তি দেন্নবি হেন্নে
5: হুম
4: তি দেন্নবি কেনো তি বিদালুবি আ নন তো বুনেবেনি এহেম মিহু বিদা